0: त्यतै चपुवा मार्दै मार्ने त काटी
1: नाता छ वा साँपन कुछ नि कराइ साँप कुछ नि कर त ल्या ऊ अपने चल गेल त कुछ कराइल त ओ सक्कु साँप बिखावा थिए नि र त
0: बिखा हो कि नि हो कसी कसी हिँड्न त दाई
2: ल्या नेपालमा पाँचजना बिखा साँपनको विषयमा सुन एक ठोर ठ गरैचा जोन खास कै ख रातिक समयमा घरभित्र बैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाइ फे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कै ख सास ठ्यार जो निसेकना मेसे लक्क होइ सेक्ठ और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुले ठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा डेक पर्ना ओ खास कै ख सन्ध्या बिहान डेक पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्ठ ओ और रठ कैरी जातक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था रकत थे पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकाराना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ध्यूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिवेर सापन का दसाई का घटना ध्यूर बिना कर लग पा जाए
4: ध्यूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डारल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकारी गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com
10: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे सुरु करल मनै घर सिज्जा सेक्ल
11: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
10: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुन कि गोंगुवा बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए
12: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
13: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
14: के तपाईलाई थाहा छ
15: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
14: हो र
15: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
14: अनि
15: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
14: के छ त विकल्प?
15: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
14: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
15: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
14: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
15: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
16: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
17: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
16: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
17: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
18: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
19: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: सामुदायिक रेडियो टीका आफू एफएमके बिहानिक 9 बजे के खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहलाभ हाम्रो पात्र नेपाली पात्र बफी सुन्ती हलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से दलतपुर घाट में निर्माणधीन झुलिंगे पुल के काम अंतिम चरण में असार के पहिलो साता भीतर पुल हस्तांतरण करना निर्माण व्यवसाय के लक्ष्य बर्दियाकी शांति बजार में तेस्रो रक्तदान तथा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न एचआईवी संक्रमित भुक्तिरहल लाल थाना बारे छलफल सुदूरपश्चिम प्रदेश में 3812 जना एचआईवी संक्रमित नियमित औषधि सेवन करते पश्चिमी वायु के प्रभाव वर्षा और हिमपात की संभावना दलपुर घाट में कर्णाली लद्या के ऊपर बंडीरहल झुलिंगे पुल निर्माण के काम अंतिम चरण में पुगसकलवा 2 वर्ष में बन सक न पर्ना पुल निर्माण कार्य शुरू हुईलक 1 वर्ष पुग्न लगलग 90% काम सम्पन्न हो सकलवा कैलाली बर्दिया जोड़ना दलपुर घटवा में कर्णाली नदिया के ऊपर बंडीरहल झुलिंगे पुल निर्माण के काम 1 वर्ष में ओरेलवा 2 वर्ष निर्माण करसेक पर्ना पुल काम शुरू कलक 1 वर्ष पुग्न लगलग पुल निर्माण के 90% सम्पन्न हो सकलवा गैलक असार मसे पुल निर्माण के काम शुरू कलक अधीनसम अवस्था हेलक पुल के निर्माण कार्य 90% सम्पन्न हुआ अब बाकी 10% काम ओराके जेठ के अंतिम असार के पहले साता भीतर पुल के निर्माण सबको काम ओरैना निर्माण कंपनी बोटिलोट क्षमता अनुसार 2084 साल असार 11 गतेसम निर्माण कार्य के म्याद रलक हुईलसेफे 1 वर्ष आघने पुल निर्माण के काम ओरैना लगलगवा सकु सहयोग काम करना स्थान के वातावरण फे अपना काम करना सहसुलक समझौता मिति आघने काम ओरैना लगलग निर्माण व्यवसायी विक्रम बस्नेत बुटिलोट लम्बा समय पाछा दौलतपुर घटोमा कर्णाली लद्याकी ऊपर झुलुङ्गे पुल बन्न लगलको उमहफे सम्झौता मिति आखने निर्माण कार्य ओरिना लगलक यहाँ के नागरिक प्रफे खुशी हुलबाट कैलालीकी टीकापुर कर्मी डाँडाकी पूर्णराज बुढामगर बोटिलोबाट पूर्णराज बुढामगर सिंह टीकापुर एक व्यवसाय क्षेत्र के रूप बहादुर सावत फे निर्माण कार्य शुरू हुलक 1 वर्षमा पुल के निर्माण कार्य ओरिना लगलक खुशी हुल बोटिलोबाट वहाँ बोटिलोट लम्बा समय के पर्खाई में से झुलुङ्गे पुल बंटी रह यहां के नागरिक धेर खुशी बाटी कैके बोटिलोट यहां झुलुङ्गे पुल समेत नहीं हुल कि हिंद में ढुंगा के कठिनपूर्ण यात्रा हो बरसात में कबू काल ओहो ढुंगा मफे बंद हुईना हुलक अपना ढेर समस्या हुईना कलक बाट अब यहां पुल बनल पाछा बर्दिया मसे कैलाली मसे बर्दिया आवत जावत करना ढेर सहज हुईल बोटिलोट दौलतपुर कर्मी डाँडा के सामाजिक कौआ सिंहराज बुढामगर उक्त झुलुङ्गे पुल निर्माण के काम थानी निर्माण सेवा कर्तृहलबाट पुल में अटो रिक्सा मोटरसाइकल सम आउजात करसेकना हुलेसेफे पुल के बीच भाग में अटो रिक्सा तथा मोटरसाइकल पार्किंग समेत करसेकना संरचना निर्माण कलको झुलुङ्गे पुल में सीन संरचना पहिलो हुलक निर्माण व्यवसायी विक्रम बस्नेत बोटिलोबाट भ्याट बाहेक 15,73,00,000 निर्माण हुन लगलग पुल के लंबाई 482.13 मीटर चौड़ाई 1.60 मीटर हलवा नेपाल सरकार के झुलुङ्गे पुल विभाग अंतर्गत बंटी करलक पुल के 5 ठो मुख्य हो अन्य सहायक करके 11 ठो पिल्लर हलवा कैलालीकी टीकापुर नगरपालिकामा अनौपचारिक मगर भाषा प्रशिक्षण शुरू हिलवा नेपाल मगर संघ टीकापुर नगर कमिटीकै आयोजनामा शुरू हिलक प्रशिक्षण असार 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेवा प्रशिक्षण कार्यक्रममा करिब 50 जनाकै सहभागिता रहलक नेपाल मगर संघ टीकापुर जानकारी दिलबाट 12-18 मगरातकै अलग अलग स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेवा 12 मगरातकै टीकापुरकै पशु हाट बजार र 18 मगरातकै बनगाउँ मगर टोलमा प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेवा 18 मगरातमा खाम भाषा हो 12 मगरातमा मैढुट भाषा के प्रशिक्षण हिना मगर समुदाय के अगुवा वीरबहादुर खटी मगर जानकारी दिलबाट खाम भाषा के रम्बा पुन मगर हो मैढट भाषा के चक्र असलामी मगर प्रशिक्षण दिल हुनाबाट मगर समुदाय के खान तथा मैढट भाषा लोप हुना लगल पाछ वकर संरक्षण केला कसिन प्रशिक्षण के आयोजना कलक आयोजक बटिलोबाट प्रशिक्षण कार्यक्रम टीकापुर नगरपालिका वड़ा नम्बर 1 के आर्थिक सहयोग शुरू हुआ प्रशिक्षण के उद्घाटन करना टीकापुर नगरपालिका वड़ा नम्बर 1 के वड़ा सदस्य गणेश बहादुर खत्ती मगर समुदाय के भाषा लोफुटी गैलक वकर संरक्षण केलाक वड़ा कार्यालय सहयोग कलक बटिलोबाट मगर संघ के नगर अध्यक्ष खोमान खेमान सिंह बुन मगरकी अध्यक्षता महुलक कार्यक्रम स्वागत दिलु घरती मगर कला सेफे संचालन गोम घरती मगर कला रहे। बर्दियाकी शान्ति बजारमा तेस्रो रक्तदान तथा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न हुल्बा गगन सिंह कुमार फाउण्डेशन नेपाल गेरुवा बर्दियाकी आयोजना महुलक आँखी शिविरमा 232 जनाकी आँखी जाँच गरिल्बा। आँखा जाँच गर्नमा 148 महिला व 84 पुरूष रहलबाट आँखी जाँच कलक मध्ये 27 जनामा मोती बिन्दुकी अपरेशन पर्ना देखलको महाउक्र ऐना शनिबार गुलरिया स्थित शिवगंगा अस्पतालमा अपरेशन कलक हुलबाट रक्तदान कार्यक्रममा 2 महिला सहित 56 जना रक्तदान कलक गगन सिंह कुँवर फाउण्डेशन नेपाल बर्दियाकी अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर जानकारी दिलबाट कार्यक्रममा गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2-3 रोहित फाउण्डेशन भेरी मालिका पोलिक्लिनिक शान्ति बजारकै सहयोग नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा बर्दिया लारी रक्त संचार केन्द्र गुलरिया शिवगंगा आँखा अस्पताल गुलरिया बर्दियाकी प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गेरुवा उपशाखा रक्तदान समाज गेरुवाकी समन्वय हुल रह। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 के कार्यालय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका व बढ़घर आवश्यक सामग्री वितरण कलबाट वडा कार्यालय वडा मरलक 9 जना स्वयं सेविका साइकल वितरण कला सफेद 10 जना बढ़घर मोबाइल प्लास्टिक के टेबल 5 थान कुर्सी 3 के बाकस आवश्यक स्टेशनरी सामान वितरण कलबाट स्वयं सेविका व बढ़घर सामग्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीमती तालो वडा अध्यक्ष दीपक चौधरी हस्तान्तरण कलबाट सामग्री वितरण कार्यक्रम इन्जिनियर राजेन्द्र राव लेखा अधिकृत देवी कृष्ण जोशी जेएनसी अधिकृत दिला जोशी लगायत उपस्थित हुल रहे। सामग्री पाल्पा छ सोम सेविका व बडघर खुशी हुलबाट खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछा फेरसे विश्वन्तिर विश्वामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
2: सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी 30 जना सामान्य चिकित्सा एचए 40 जना नेत्र विज्ञान ओए 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी डीपीएच 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गतेदेखि
1: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
2: आवेदन फारम शुल्क रु 1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.cityvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि एसएका कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: एसई एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0969900044 9858700044 9847202740 9642823921 र 9659963520।
3: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली सञ्चालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
5: कर्णाली नमूनामा भी टीकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू:
5: फराकिला कक्षाहरू,
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
6: खेलकुद सुविधा,
5: कम्प्युटर शिक्षा,
6: स्वच्छ पिउने पानी,
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584-24167।
5: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
7: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
7: सत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 7 जेठ 1 समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वार्ड नम्बर 1 जेठ 3 समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 5 जेठ 4 समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: अस्तेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 4 जेठ 5 समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 2 जेठ 6 समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 1 जेठ 7 समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: एकनगर कार्य समितिको भवन, वार्ड नम्बर 1 जेठ 8 समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वार्ड नम्बर 6 जेठ 10 समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 9 जेठ 11 समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नम्बर 3 जेठ 12 समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
0: कैलालीकै टीकापुरमा एचआईभीमा हुइसक्ना लान्छला ओ भेदभाव कम गर्न सरकारवाला हुकन अभिमुखीकरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुइल्बा। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीकै आयोजनामा कार्यक्रम हुइल हो। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीकै जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रमेश कुवरकी अध्यक्षता महिला कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाकै कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नागाजी, विगतमा एचआईभी संक्रमण हुलक जीवन ओरिनाकैकै सोचाइरलक समाजमा ब औषधि खाइल्पा छ बासना हो कैकी फेस सोचाई विकास उलक संक्रमित मनोबल उच्च धर्के आँखा बढ्न आएको कलबाट नगरजी पालिकाकै संक्रमित हँदै टिएलक पोषण सहित केलाक बजेट घटलकमा बजेट सुनिश्चित गर्न फलकना प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन केन्द्रकी निर्देशक सनक ढुंगाना, संक्रमित हुक र सामाजिक लालछनाकै कारण अब फेरि समस्या भोगिरहल बटेटी, स्वास्थ्य संस्थामा फेरि बिरामी हुकनकै भेदभाव महसुस गर्न हुलक, स्वास्थ्य कर्मी हो चिकित्सकै ध्यान देह पर्ना बुटिलोबाट, संक्रमितकै अधिकार हो उपचारकै क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एएसएफके प्रदेश संयोजक माधव पन्त, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3812 जना एचआईभी संक्रमित औषधि खटिरहल जानकारी दिलबाट, सुदूरपश्चिमकै 19 स्वास्थ्य संस्थामा एआरटी सेवा सञ्चालनमा बा, कैलालीकै 4 ठाउँमा से एआरटी सेवा चलन सञ्चालनमा बा, उहाँकै एचआईभी संक्रमित भाइरल लोड जाँच गर्न औषधि नियमित खैना वा स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य गर्न आग्रह कलबाट, पन्तकी अनुसार सुदूरकी 9 जिल्लाकै तथ्याङ्क हेर्दा कैलालीमा सबसे धेर बढ़ी 1802 जना संक्रमित रहलबाट, दोस्रो अछाममा जिल्लामा 562 ब्रेमन हुक्रबाट संक्रमित महिलाकै संख्या धेरबा 2041 महिला, 1625 पुरूष, 110 बालबालिका हो 34 जना युनिक अल्पसंख्या संक्रमित रहलबाट, पालिका हुक्रा तथ्याङ्क हेर्दा टीकापुरमा 150 जना धनगढ़ीमा 244, लम्की चुहामा 194, गोदावरीमा 291 जना रहलबाट उहाँ संक्रमित, दाई भवनकी बच्चाहाँ समाजकी व्यवहारकै कारण असरपना हुलक एमएफएसको ध्यान देहपर्ना बोटिलोबाट। कार्यक्रममा यूएनडीपीके प्रदेश संयोजक प्रकाश लेखक, दुई दशक स्याग संक्रमित औषधि पैना फेरि ढेवटर पर्ना पर्लक स्मरण कर्ती अब ढेर सहशील गोटिलोबाट उहाँ सरकार तथा ढेरोसिन संघ संस्थाकै सहयोगमा अब बिरिमे हुकनकै सहस औषधि, यातायात खर्च, वार्षिक पोषण सहयोग, निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लगायतकै कार्यक्रम पैठीहल बोटिलोबाट। जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश कुंवर कार्यक्रममा उठलकबाट, मन्त्री समक्ष सुनिनाओ बजेट केलाक पहल कर्ना बोटिलोबाट, स्वास्थ्य कार्यालयकी एचआईभी फोकल पर्सन सूर्य कुंवर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ला रहे। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयकी उपकुलपति हो। रजिस्ट्रार छनौट केलाक तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरिएको, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेलकी अध्यक्षतामा प्रधानाध्यापक डाक्टर जयराज अवस्थी संयोजक रलक समिति गठन हुआ। बैठक के ढेरसिंह क्षेत्र में 6 जनाकी विश्वविद्यालय सभा सदस्य मनोनयन करके सीनेट में 2 महिला सहित विशिष्ट व्यक्ति समावेश कर। खोज खबरमा फेरि विश्राम सम्पा छ फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीका प्रएफएम।
9: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा कति मिठो, मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी, कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक, पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु, अब खाने पालो तपाईँको। जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है।
10: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13, सम्पर्क नम्बर 98584 89455 र 98673 69622।
9: रियल मिल्क, रियल आइसक्रिम, अमूल्य आइसक्रिम, खोजी खोजी खाऊ यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।
11: जानकी गांव पालिका को गांववासी हार्दिक अनुरोध।
12: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन 18

0: मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
4: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। हाल देश में पश्चिमी और स्थानीय वायु तथा मुलुक के नजिक तल्लो वायुमंडल मार्लक न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव रहल बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार अब कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश की हिमाली था पहाड़ी भाग में साधारणतया बदली रलासे फिर बाकी भाग में आंशिक बदली हुई बा। बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ तथा कोशी प्रदेश के एक दुई ठाव मेघगर्जन सहित हल्का से मध्यम वर्षा हुई रहल बा। आज दिन के कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश सहित देश के हिमाली तथा पहाड़ी भाग में साधारणतया बदली रहना तथा तारा में आंशिक बदली हुई बा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ ठाव बाकी हिमाली तथा पहाड़ी भाग के कुछ ठाव तराई के एक दुई स्थान में मेघगर्जन तथा चट्यांग सहित मध्यमसम वर्षा और हिमपात के संभावना रहल बा। अस्तनगर के आज रात के कोशी मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश सहित देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारण बदली रहना तथा बाकी पहाड़ी और तराई भूभाग में आंशिक बदली रहना पूर्वानुमान कर बा। कोशी और मधेश प्रदेश सहित बागमती और गंडकी प्रदेश की हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग के कुछ तथा कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश की हिमाली भूभाग एक दुई ठाव मेघगर्जन तथा चट्यांग सहित मध्यमसम वर्षा तथा हिमपात की संभावना लग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनेलवा। यह समाचार संग खोज खबर वरल जना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो। जनकपुर घाट में निर्माणधीन झुरंगे पुल के काम अंतिम चरण में असार के पहले साता भीतर पुल हस्तांतरण करना निर्माण व्यवसाय बर्दिया के शांति बजार में तेसरो रक्तदान तथा निःशुल्क आखा शिविर संपन्न। एचआईवी संक्रमित भुक्ति रहल लालथना बारे छलफल सुदूरपश्चिम प्रदेश में 3,812 जना एचआईवी संक्रमित नियमित औषधि सेवन करते। पश्चिमी वायु के प्रभाव वर्षा और हिमपात के संभावना। लिटाबकला खोज खबर अथवा प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद लिटी आबकला खोज खबर से मई सीता चौधरी बिदा हिटू यहां पाछा 12 बजे की खोज खबर सुन सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा सुन सिंटी रवि राम राम।

0: आफ्ना बैरागले गाउँछु बैस्थाछ बनाउले
1: काके सागो चुनुक चुनुक जित्ता भड्कुनाले मेरा ताई पराया प्रिया।

0: ना बादल आकाश आउँदो चट्याङ चुट्टुङ झरी मेरा जैथा दुख कहीं नहीं सारा त्यसै भरी
1: आधा स्वर्ग खम्पानी छ आधा स्वर्ग बिदो मर्ने बाँच्ने।

0: रानी जमरा कुलरिया सिप भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया सिप भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिगापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभाको बैठकको गणपूरक संख्या नपुगी तपसिलको मिति स्थान र समयमा पुनः बस्ने भएकाले पूर्ण पार्षद ज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानेर साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 10 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभा हल, समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 091561022। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलाली।
1: फुटबल
2: पातल की का हो विवेक फुटबल
1: विवेक जिना क्या संघारू देव शांत होकर झूठी चल का बैठो हमारा तुह न स्वास्थ्य केंद्र फुगे दी अ पारस तू घर दारू हो न मोटरसाइकिल ले खाए कहो तो
2: हो विवेक न यहाँ खुला ठाव मसुताई जो झलंग झुलुम निकरा खन मारी काटी ले वही है ना हक दिए तू पिल्ली में काटला खल सोईची बा काटल ठाव न छो चलाई नीवी न
1: अब मैं विवेक खाना सजिल हुई ना कही खाओ आकर कस के लग पीटी ताँ धीरा धीरा खोल दे तू वो घरी वो मुंडी फेंक खार दे हम
2: बिठा रोशन मैं यह डाला विवेक का जुटा वो मजा धीरा धीरा निकाल दे
1: झूठ जसिन सापन का दसाई खतरनाक नहीं रहा समय में जो उपचार कराई से क्लसे विखा सपन का कातल मन यहाना फेब बचाई से जिठा सकुआ कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में फुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
3: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैफ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज स्नैक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सक जिठा।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली।
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी एक भुवाजा आगी लिन अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भाटवट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864241208 और 9846239261
2: विद्युत महसूल भुगतानी संबंधी सूचना 2083 असार 1 गते बाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुरकै लाली
3: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
4: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870 10672।
7: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ काकना हो बाबा फे ओष्टबाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनले से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखले का हुइतिस जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेराकै ठ कबु पेन्सिल हेराकै ठ कबु झलै फटाकै ठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: त कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर मरलक रड्गे या झोला उडोक मसे वहाँ झिंगलान दिदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कापी हेरी थी ना कबु पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबु पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन में भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहिन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लाग्ने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
1: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848528 28

0: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे घोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ते खोस्ते परेशान आटु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक सीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।
2: करुणा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना खुल्यो। यही शैक्षिक सत्र 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी शुभचिन्तक इष्ट मित्रहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अंग्रेजी माध्यममा र नेपाली माध्यममा नयाँ भर्ना खुल्यो। यदि तपाईँ आफ्नो नानी बाबुहरूलाई भर्ना गराउन चाहनुहुन्छ भने करुणा निम्न माध्यमिक विद्यालय विकासपुर पार्क रोड टिकापुरमा सम्पर्क गर्नुहोला। करुणा निम्न माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर 2 विकासपुर पार्क रोड टिकापुर कैलाली

विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलकोर से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराईती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा के होस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
4: ई सेवा सबै सधैँ सँगै
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नेपालमा
1: पाजेना बिखा सापनको विषयमा सुन। एक ठोर गरैचा जोन खास कै रातिक समयमा घर भित्र बैठ सेक्छ। यी कटला से निबठाई फे स्याकत तर कटला पाछ डे भाग जो निचलना कै सास फ्यार जो निसेकना मे से लक्क होई सेक्छ। और रठ डोम जोन बड़ा रिसाहा मेरी रठ निकर फाट फुले थ डोम साप दिन वा रात दुनु में देख पड़ना ओ खास कै संध्या बिहान देख पर्छ। निकर कटला से फे लक्क होई सेक्छ ओ और रठ कैरी जातक साप निकर कटला कलसे कटला भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था। रकत थे पाची रोकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकारना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
2: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बछारा नाश विदेश सापन का दसाई का घटना धीर बिना कर लग पा जाए।
3: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सब पर दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870-10672। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417।
8: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: नाई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वहाँ नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कतरा सुघर बना कन लाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846439261
2: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रहेको छ विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरण यह सूचना से जानकारी कराई थी विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय खेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसुआ आयल कलश आब मुसुआ खुशी सब पठे आई सकता
1: ओहो हो निका सबका समझनो घर खाने पादा जफास से बाहर से कच्चा का पहिल बा काटा पर ना रह
0: असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना वो तेला रोटी पका का बासी छाई दूसरा सल परिवार मन मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर भी तो नहीं भी
1: हुई था वो बुढ़वा असी डाला मत ध्यान ध्यान पोहर झफास भी था मा साफ नुख का बैठल रह सकते ना
0: वो हो उसके तक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ढंग ढंग घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर थे सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में तो चबरदार पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा फूल से सांप पहना था उस तरह कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बर्खा छागक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई से
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगा लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854889213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: आजै डाउनलोड गर्नुहोस् नेपा एप।
1: विवेक
2: जिना क्या सङ्घारू देव साँझोका ढ्युनी चल्क बैठ हाम्रा तुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैदी ऐ पारस तू घर दादु हन मोटरसाइकल लेखाएको
3: हो
2: त
3: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँमा सुताई झुल झल्याङ झुलुङ निकराखन मुहारी कापीले ओही हन हौदी हेटु पिल्लीमा काटला खल सोइटीबा काटल ठाउँमा न छो चलाई निहुन
2: अब मै विवेक हन सजिल हुन कै खल वाकर कसके पेटी टाँग धीरे धीरे खोल हेटु ओ घरी वो मुन्द्री फेक हार देह
3: बिठारो छन् मै यही जाला विवेकका जुत्ता ऊ मजा धीरे धीरे निकाल देह
2: झुर चसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह समय मजो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मन यहाँ फे बचाई से जिठा सपवा कतलक मन यहाँ झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिने छ जिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दी भोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनै नउने न पट्टा नि पैना त
2: अदि गहना बनै न त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे के कतरा सुगर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ हो जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना।
1: सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि 3 वर्ष प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना, सामान्य चिकित्सा HA 40 जना, नेत्र विज्ञान OA 40 जना, डिप्लोमा इन फार्मेसी DPF 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
0: भर्ना कार्यक्रम
1: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गतेदेखि।
0: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार।
1: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र। अनलाइन आवेदन फारम www.cityvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SEA कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
0: आवश्यक कागज पत्रहरू
1: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति,
0: जन्म दर्ता, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, स्क्यान प्रतिलिपि,
1: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि,
0: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो,
1: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस।
0: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर।
1: सम्पर्क नम्बर 0969-59044, 98-58-78-00-44, 98-487-20-247, 97-642-33-921 र 98-69-63-520। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
2: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
3: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
2: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
3: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
2: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
4: के हजुर नया घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या हजुरको घरमा लिकेज छ, छतबाट पानी चुहिने, भित्तामा दाग देखिने, पेन्ट बिग्रिने वा स्ट्रक्चर कमजोर हुँदै गएको छ, यस्तो समस्या समयमै समाधान नगरेमा पछि ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ। दिवार फुट्ने, छाना झन कमजोर हुने, करेन्ट लाग्ने र घरको मजबुती घट्ने खतरा हुन्छ। अब चिन्ता लिनु पर्दैन। धनगढ़ी वाटर प्रुफिंग एण्ड होम डेकोर ले ल्याएको छ वाटर प्रुफिंग र होम डेकोर सम्बन्धित PVC, WPC र फ्लुटेड प्यानल को काम र बिक्रीको सेवा पनि गरिन्छ। धनगढ़ी वाटर प्रुफिंग एण्ड होम डेकोर, टिकापुरका लागि सम्पर्क भरत अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी कोण पछाडि, फोन नम्बर 98648-36213।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो
1: कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाइनाजो माइलो त्यो बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ हो तलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लाग्या लागे हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठक्रला रोड टिकापुर कैलाली
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जार सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
5: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
0: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाई।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाएं।
6: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइती रहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 1, Z3 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5, Z4 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
1: अस्थिरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4, Z5 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 2, Z6 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
1: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1, Z7 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 1, Z8 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
1: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 6, Z10 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9, Z11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
1: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 3, Z12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेम जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600095 ओ मोबाइल नंबर 9848423359।
3: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को सूचना।
0: आदरणीय जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वासीहरू, सड़कको किनारमा पशु चौपाया, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, मल नथुपारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। यदि यस्तो गरेको खण्डमा दुर्घटना भएमा स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। सड़क किनारमा वस्तुहरू नथुपारी दुर्घटनाबाट जोगियौं। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को कार्यालय मिलन चौक कैलाली।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध गरी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आज था कहा का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
4: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा भिडियो एक्सरे सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ गणेशपुर खोप किन्निक भवन वडा नम्बर 1-3 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
3: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 5-4 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
4: शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 4-5 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
3: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 2-6 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
4: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1-7 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
3: एकनगर कार्य समितिको भवन वडा नम्बर 1-8 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
4: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6-10 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
3: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9-11 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
4: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3-12 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
3: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
5: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
6: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
3: आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
5: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 98688-0008 र 98253-77-72

0: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलकोर से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराएती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
1: नरेश दाई, तपाईको फोन आउने बित्तिकै म दौडेर आए कि खै भाउजू कता हुनुहुन्छ?
2: त्यहाँ फलैचामा सुतेको छिन् बहिनी, हिँड्नुहोस् न उतै।
1: भाउजू कहाँनिर टोके तपाईँलाई? घर वरिपरि त सफा सुग्घर राख्नु भएको रहेछ तर पनि टोक्नु भएछ है तपाईँलाई?
3: यहाँ कुर्कुचनले टोकेको हो नानी, उहाँले एम्बुलेन्सलाई खबर त गर्नुभएको छ। कति बेरमा पो आइपुग्ने हो?
1: नआतिनुहोस् है भाउजू, हामी छौ, तपाईँलाई केही हुँदैन, बरु खुट्टालाई नहल्लाउनुहोस्। र नरेश दाई, एम्बुलेन्स आउन समय लाग्ने हुन सक्छ, नजिकै कसैको मोटरसाइकल भए त्यसैमा राखेर भाउजूलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र लाने तयारी गर्नुपर्छ।
2: यति बेला त खाली कुरा पनि दिनु हुँदैन होइन त स्वयंसेविका बहिनी?
1: हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, चिकित्सकले नभनेसम्म बिरामीलाई केही पनि खुवाउनु हुँदैन।
4: सर्पले टोक्ने बित्तिकै सहज वातावरण बनाउने र सर्पले टोकेको अङ्गलाई स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। टम्म कसिएको कपडा, गरगहना, घडी, पेटी, औठी आदि भए फुकाली दिएर खुकुलो गराउनुहोस्। बिरामी आत्तिए झन समस्या हुने भएकोले बिरामीलाई शान्त रहन सहयोग गर्नुपर्छ। कतिपयले सर्पले टोकेको ठाउँ भन्दा माथि डोरीले कसिलो गरी बाँध्ने पनि गर्छन्। यसो गर्दा रक्त सञ्चारमा समस्या हुन सक्छ, जसले गर्दा सर्पले डसेको शरीरको भाग काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ।
5: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टीबाटी देन मोटरसाइकल घुमाकर धर्ने करिना
8: बैठा बैठा रम्यान रस रस मर पा बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम फुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुई सेक नापुला को से पाछा से पकड़ का बैठा पर्था का
9: ब्रह्म्याना अगर हुई कई का मई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हुई बा
8: एम्बुलेन्स और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमा था मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक तरफ से बाट सजिला से वो झट्ट पा जिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेर का सुचा का लगभग एंटी भेनम भेला को उपचार केन्द्र में लै जाए पड़ता
7: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वार लगा के राजे
8: वहां न कतलक सबका का फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो खिला से सबका चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
9: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई जी
10: सफर दस डारल कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
11: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेक दिथा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश